उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

0: थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।
1: मैं क्या ढूंढते रहती है ये आंखें मुझ में।

0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू।
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: प्यार
0: प्यार
2: प्यार।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

और इतना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी अंदर लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kuch saaye, kuch parchhaiyan, kuch chahat ke sajde. Kuch behte baadlon pe rakhi umeedein, barasti rahin, tarasti rahin. Chaand aasmaan mein jale suraakh ki tarah jhaankta raha. Aur raat किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांफती रही। रास्ते पांव तले से निकलते रहे, न रुके न थमे, न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है। जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वा उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ बीन रहा है, कुछ ढूंढ रहा है।

जब से बलम घर आए तो जियरा मचल मचल जाए। लता जी की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म आवाज।

आपका वेलकम है हजरत। भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है।

ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, उन दिनों की बात है। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम और गाने वाले सोनू निगम एंड सरिका कपूर, इन दोनों से प्रोग्राम में गीत को आप सुने उजाला रेडियो। एक बार फिर सोनू निगम, इस बार सुनिधि चौहान के साथ।

सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, इन दोनों से आप सुने कि जब से मेरे दिल को हुए उफ। फिल्म का नाम तेरी मेरी कहानी और स्टेशन उजाला रेडियो।

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net

उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं सविता सिंह एंड साधना लीला की आवाज में गोल गप्पा का नगमा पेश किया गया है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और यहीं से ला रहे हैं आप लोग की फरमाइश। हेलमोंड के रहने वाला अंश ईशान भागोला के कल मुंडन संस्कार है। हेलमोंड में रहते हैं अंश ईशान भागोला का मुंडन संस्कार एतवार 24 तारीख मई होने वाला है। मुंडन संस्कार के पर बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना किया जा रहे हैं कि छोटे से अंश ईशान भागोला को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते। हेलमोंड के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य पर पापा किरण भागोला और मामा दनिशा भागीराथी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते और बहन ईशा भाई के लिए बधाई शुभकामना प्यार और दुलार के साथ पेश है।

हेलमुंड के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है। मुंड संस्कार के वर्ष पर पापा किरण भागोला एंड मामा धनिशा भागीराथी प्यार प्यारा बेटा के लिए बहन ईशा भाई के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश के। हेलमुंड के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है। खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा धनिशा भागीराथी प्यार प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश है।

उनके रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनिशा भागीरथी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। हेलमुंड के रहने वाला नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला का काम कल मुंडन संस्कार है। मुंडन संस्कार की खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनिशा भागीरथी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश करें।

हेलमोंग के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मून संस्कार है। खुशी के मौके पर पापा किरण भगोला एंड मामा दनीशा भागीरथी प्यार प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है एतवार 24 तारीख मई को। खुशी के मौके पर सूत्रमेर और आइंदहोवन के रहने वाले आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए, पर नानी रुक्मीन जिबोत सहतु पर नाती के लिए, पापा किरण भगोला और मामा दनीशा भागीरथी बेटा के लिए, बहन ईशा भाई के लिए, दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते, काकी शरीसा रामचरण एंड फुफा संजय सुखचंद और फुफा होने वाले फुफा रोहन रामजवान के तरफ से बेटा के लिए, और दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश करें।

मुंड के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है। खुशी के मौके पर सूत्रमेर और एंधोव के रहने वाले आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहतु पोता के लिए, पर नानी रुक्मीन जीबोध सहतु पर नाती के लिए, पापा किरण भागोला और मामा दनीशा भागीरथ बेटा के लिए, बहन ईशा भाई के लिए, दोपुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते, काकी शरीशा रामचरण, फूफा संजय सुखचंद और होने वाले फूफा रोहन राम जवान के तरफ से बेटा के लिए, दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाई शुभकामना के साथ नहमा को फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है। खुशी के मौके पर आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ पेश है।

0: अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर। आज यहाँ सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का मुंडन संस्कार कल है हेलमोन में जो रहते हैं। खुशी के मौके पर आज यहाँ सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ पेश है।
1: सोने

एल्बम के रहने वाला प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर। आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना के साथ आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है, पूरा परिवार के साथ मुंड संस्कार कल होने वाला है। खुशी के मौके पर आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।

अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है, कल मुंडन है, खुशी के मौके पर आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहतु पोता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है और इस मुंडन संस्कार के खुशी के मौके पर दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भागोला बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद प्यार दुलार के साथ पेश करें।

मून के रहने वाला है अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के खुश के मौके पर दो फुआ आश्मिनी और सिमरन एंड काका कवेश भागोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना और प्यार दुला

कल जबकि इतवार 24 तारीख में है तो हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का मुंडन संस्कार होने वाला है। इस खुशी के मौके पर भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना की जा रहा भी। भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला को हमेशा खुश रखे तंदुरुस्त रखे अंश ईशान भागोला को। परिवार भगोला फरमाइश अभी हम जारी करने वाले हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद जरूर सुन लेना। सुन वालों उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है 59 फ्राग फॉर मार 100 यूरो ऑफ यू आर उजाला रेडियो। स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.net।

खास प्यार दुलार के साथ फरमाइश किए। अंश ईशान भगोला का मुंडन संस्कार कल होने वाला है और इस खुशी के मौके पर फरमाइश कर रहे हैं प्रोग्राम में आजा सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतो पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश है।

0: van Bhaugala Kakal, Moon Sanskar hai Khushi ke mauke par. Aaja Subhash Bhagola aur aaj Geeta Bhagola Sehetu Pota ke liye. Do phua Ashmini aur Simran aur Kaka Kavish Bhagola beta ke waste badhai shubhkamna aur aashirvaad ke saath farmaish ke.
1: मामी काकी मौसी सब कहा है भैया पंडित के बोलैले की ना नौवा के बोलैले की ना लड़का के मुरन है.
0: हेलमोंड के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुन्न संस्कार है खुशी के मौके पर. आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए दोपहुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें.

मून ने संस्कार है खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के आजा सुहास भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाइयां और शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश के हेलमोन के रहने वाला प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा अंश ईशान भगोला का कल मून संस्कार है खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश करने वाला है काका कवेश भगोला और काकी शरीशा रामचरण बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ।

हेलमोंड के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है, कल इतवार 24 मई को, और इस खुशी के मौके पर काका कवेश भगोला और काकी शरीशा रामचरण बेटा के वास्ते बधाइयां और शुभकामना के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है, खुशी के मौके पर एंधोवे के रहने वाले हैं फुआ अश्विनी सुखचैन, और वो भी फुआ अश्विनी सुखचैन भगोला एंड फुफा संजय सुखचैन बेटा के वास्ते, दो भाई अक्षय और वीरेन भाई के वास्ते बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश है। चलो

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल 24 तारीख मई को मुंड संस्कार है। खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के एंडहोफ के रहने वाले हैं। हुआ अश्विनी सुखचैन भगोला और फूफा संजय सुखचैन बेटा के वास्ते, दो भाई अक्षय और वीरेन भाई के वास्ते बधाइयां और शुभकामना के साथ फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है और इस खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश कर रहे हैं आजा सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाइयां शुभकामना और आशीर्वाद के साथ।

हेल मोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में आजा सुभाष भगोला एंड आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ कहां से महादेवा प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर सूत्रमेर और एंडहोव के रहने वाले हैं आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए पर नानी रुक्मीन जीबोत सहतु पर नाती के लिए पापा किरण भगोला और मामा दनीशा भागीराथी बेटा के लिए बहन ईशा भाई के वास्ते दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते काकी शरीशा रामचरण एंड फुफा संजय सुखचैन और होने वाले फुफा रोहन राम जवान के तरफ से बेटा के लिए दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश है।

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है। इस मुंड संस्कार के खुशी के मौके पर सुतमेर और एंथोव के रहने वाले हैं आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए, पर नानी रुक्मीन जीबो सहतु पर नाती के लिए, पापा किरण भगोला एंड मामा दनीशा भागीराथी बेटा के लिए, बहन ईशा भाई के लिए, दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के लिए, काकी शरीशा रामचरण एंड फुफा संजय सुखचैन एंड होने वाले फुफा रोहन रामजवान की तरफ से बेटा के लिए, एंड दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना के साथ ये नहमा को फरमाइश किए। हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य पर हार्दिक से बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से, और ये भी भगवान से प्रार्थना है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भगोला को छोटा सा अंश ईशान भागोलो को ऊपर वाला भगवान हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से दूर रखे। छोटा अंश ईशान भागोला को ये मुंडन संस्कार जो कल होने वाला है बारंबार बधाई हो। उजाला रेडियो के जरिए जितने से फरमाइश था समाप्त होने पर है। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्त परिवार भागोला।

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनने वालों हर काम काज के लिए चेक ऑन से वेबसाइट उजाला फिंडनेल। सनीचर है, सनीचर 23 तारीख मई का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो पर। यहां तक आपने सुने हैं, हमने पेश किए हैं प्रोग्राम, मैं हूं लॉयड महावीर। एक वेंस यूली अलमाल एन हेले फाइन दाग, फाइन वीकेंड, फाइन पिंगस्टर वीकेंड। हेट वर्ड मोई वीर, हेट वर्ड वरम, लेट ऑफ द किंडर, लेट ऑफ द आउचेस एंड ब्लाइव ड्रिंकन है।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

यकीन इनके साथ दिल को छू कहते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में ऐसे मौसम में हमसे तो पूछ फीतना दिल सॉन्ग द न्यू फिल्म भूत बंगला एर पॉपुलर टॉन्स फैक्ट्री डेड मशीन फन उजाला रेडियो यो हो द तू ही दिसदा निकिता गांधी एंड अरिजीत सिंह. Ik heb the best of the 70s for ready en het is Kishore on the beat of Shankar and Jai Kishan met het prachtig lied uit de film Aqua Kome, or Gana Kabul hai, Teri Umar Nadan hai.

बस कर बस कर इतनी सी बात अभी चांद एलित कांत बीच बिगिस मापा कुमुत एक सह एलित म्यूजिक वार म्यूजिक कैनस ऑन फन हैब खनोट वास कहें लग सोनू निगम एं श्रेया घोषाल हेल अपार्ट देस साउंडट्रैक टू से आल दी हिट्स डोर द फिल्म सैम बहादुर एन फिल्म आउट इट यार 2023 इतनी सी बात De Het Zonik zit eraan tot 7 uur vanavond. En na mij neemt hij het over om 5 over 7 Rutten Ramdoula Ripandé met zijn Saturday Night Fever, The Late at Midnight. Ondertussen gaan we even lekker swingen met deze 90s Dilmira Chalte Chalte. Een bekende pokoe van Udit en Elka komt uit de film Bekaboe.

उफ उफ से प्यार हो गया, दस मोई खजेक्ट, उफ उफ से प्यार हो गया। En wat de liefde nog intenser kan maken is... Vavavoom! Vavavoom!

मोहम्मद रफी आपको सुनाए तमाम मुस्लिम भाई और बहनों के लिए जो आने वाले बुधवार मई की 27 तारीख ईद उल अज़हा मनाएंगे सारे विश्व में मशक्कत के साथ। दिल दिल दिल वसुकर पॉपुलर फोर यार एंड द साउंडट्रैक कॉम्फन सुनिधि चौहान एंड देवी कुमार द फिल्म एक दीवाने की दीवानियत एंजॉय इट इन द हिट जोन।

Ek heb een prachtige Down Memory Lane vir jy ready. An everlasting soundtrack by Sangeet Kidevia Shadidi en Mohammed Rafi. Een bekende pokoe en komt uit de film Harikaj Ki Churia, waar die original soundtrack op de draaitafel hem aapko sunayenge. ऐसन मौसम में हमसे तू पूछ दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में सुन गाना

7:07 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, 7/23 है और वो भी मैं साल 2026। स्टूडियो रोहतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। स्वागत आप सभी को हम करते हैं, आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, तहदिल से स्वागत है आप सभी को। रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाबर्स है। शुभ वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड। और क्या मौसम है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस तरह होना चाहिए वैसे ही है आज का ये मौसम, कल भी था और कल भी रहेंगे। एंजॉय। सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनने वालों, नए पुराने लोकल सॉन्ग्स के साथ आपका दिल फिर एक बार हम बहलाएंगे और वो भी रात्रि में 12 बजे तक, 5 घंटे। बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका दुलार चाहिए। मुझसे पहले सुंदर सा प्रोग्राम हमेशा की तरह शनिवार को बनाए आप सभी के मनोरंजन के लिए। 4 बजे से 7 बजे कुलीखा बड़का भैया सतीश रामदास मिसीर जी, हमने तो एंजॉय किया है हमेशा की तरह। बस यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने भी एंजॉय की है। सतीश खत लेकर खनी तूफान सन पिंकस्टर वीकेंड और भैया जी को हम कहेंगे थैंक यू, वेल धन्यवाद, शुक्रिया। All tight fine om your stem to hoor. Young and dashing fresh. Tu jaane toch. Enjoy your weekend bhaiya. Aur is shanivar ka mere pyare sunal jo aakhri 5 ghante bache hain aapka aur mera saath rahega. Mauka diya ja raha hu. Hamesha ki tarah hum aapko mauka diye ja rahe hain studio mein app karne ke liye. और जो लोग हमेशा ये कश उठाते हैं उन सभी के नाम से एक लोकल हम चलाते हैं। दूती रत्नी ज्ञानत खाए खोमा दस द लोकल सराय मसौंदर नाम नचूला के नती सौंदर मौका जब मिले है तो फायदा उठाओ। 020-363-0008 जहां पर आपको ऐप करना है, हाय हेलो कहना है, आपका शुभ नाम और आप कहां से ऐप कर रहे हैं, बस ये कहना अहल काफी है। लेकिन आपको भी मौका दिया जा रहा है ये कहने के लिए ऑफ यन स्नेल नंबर विल ऑफर रिस्टा। तो आप व्हाट्सएप करें 020-363-0008 लगातार। और मेरे प्यारे सुनाल, आपको ये भी मालूम रहे कि आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें मौत की खबरें के लिए दिन तक से आप फिर दफ्तर को तार कर पाओगे। और maandag natuurlijk gesloten vanwege tweede Pinksterdag. तो dinsdag से zaterdag सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें जो भी आप करवाना चाहेंगे, जब भी आपको उजाला रेडियो की जरूरत पड़े और तार के जरिए हमें कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे तो ये मुमकिन है। वही दफ्तर के दिन और दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर 020-409-0807 लेकिन आपके कामकाज के लिए आप जब भी चाहोगे आप मिल कर सकते हैं, क्योंकि मिल जो है आप रोजाना कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन लगातार। आप जहां पर भी रहिए, ben je in Nieuw-Zeeland of je bent in Alaska, het maakt niet uit. जब भी आपको जरूरत पड़े हो उजाला रेडियो को आप अवश्य मेल करें info@ujala.nl। और मेरे प्यारे सुनो, हमेशा शनिवार को आपको बताता हूं और कई लोग भी जुड़ गए हैं उजाला रेडियो के साथ, आप भी जुड़ना चाहते हैं और हमारा दोस्त बनना चाहेंगे
सोशल मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर। तो वहां जाकर कनेक्ट हो जाइए उजाला रेडियो के साथ। तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं आप पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर पाओगे और वो सूचना भी आप बांट सकते हैं अपने लाइन पर। तो गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो ऑन द सोशल्स और अबुने रेडियो ऑफ उजाला रेडियो ऑफ यूट्यूब। हीरे जो हम वहां पर अपलोड करते हैं आप सुन पाओगे और शायद डाउनलोड भी कर पाओगे। इन दफा का इतला इस तरह। ओके मेरे प्यारे सुनने वालों, हम शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम। आपको यह भी मालूम रहे कि जो लोग ऐप करेंगे स्टूडियो में, हमेशा की तरह 8 बजे के बाद आपके लिए गीत हम चलाएंगे 8 बजे के बाद, और जिस तरह से ऐप आएंगे अंदर उसी हिसाब से भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। हाँ, नीमन फोर्थ्रेक एंड देरी से तू ऐप करिए। तना जी ये पूछे कि ए भाई कब हमार गनवा आए, तो देरी से भी आए तू जाने तो, हमें स्कूल न दिए यार, तू जाने तो ना, ये हमें मारे नहीं। एंजॉय योर वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वाला। यहाँ मैं देखता हूँ साउटिन मिक्स, अरे भैया

या धमाकेदार साउथ इन मिक्स मेरे प्यारे सिनेमा सेवा में पेश हुआ है आज का ओपनिंग सिलेक्शन हियर ऑन यू आर और 10 मिनट बाकी हैं सरे 7 बजने में 3 मिनट फुट क्लॉक फन हाल अफा आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी को या वॉज एफ स्वीट हियर मैन अचिस न्यू लेकर कूल हो ये माँ बहुत गर्म यहाँ स्टूडियो के जो आईने हैं वहां से इस वक्त ये घाम जो है सूरज जो है वहां से अंदर आते हैं एंड दैट इज वेल यामर वन दन हैप्पी एक्स्ट्रा वार्म हियर हालांकि राम ओपस है मरम ब्लास्टी तो गर्म हवा मारे तेज न्यू लेकर कूल मेरे प्यारे सुनो लो रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब से फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को सैटरडे नाइट फीवर पेश कर रहा हूं एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से और जब भी मौका मिलता है शनिवार को अलसत खान एमानेर मख दन बेनेकर और आपका दिल बहला रहा हूं विद द ब्यूटीफुल लोकल्स और आज सेवा में बहुत सारे नए इस साल का और जो आज रिलीज हुए हैं कल रिलीज हुए हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुए हैं मार कुछ पुराने भी हम आप तक पेश करेंगे तू जाने तो कैसे हम प्रोग्राम में हरदम जंप फुट करेला कभी ऊपर कभी नीचे नूल 20 3 0 0 जहां पर सब कोई ऐप कर सके हैं और एक गीत हम ड्राई कर ली और इतने जाना हम देखे ला इतने जने हमें ऐप करी से कि अब तू ऐप करिए तो तोर गाना जो है गनवा तोर हम ड्राई करब सीकर वही तो 9 बजे के बाद वन 8 बजे से 9 बजे वो ब्लॉक को एकदम फॉलो है तू जाने रमियान खराब ना करे तू तो मेरे प्यारे सुनने वालों आप भी चाहते हैं 020-363-0000 एंड लाते हैं अली मार ऑफ द एप हैव ओवर द प्रोग्राम दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों आप दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर करें जस्ट नीट ना द स्टूडियो डार ओवर एप बेल मेट Met kantoor is 020-409-0807. Or ja, dat kan vanaf dinsdag mangelwaard zijn. Zijn niet waardig. Jonki, somoharko bedaki. Tussen met 10 budget zijn met 10 budget. 020-409-0807. Maar toen na mangje gore, toen jaan het toch. Mailwa kerde. Want mailwa, jap hi tu mangje, tu mail kersake. info@ujala.nl. अमरीश भोला सिंह अरे बाप रे एक मैशअप ये भी गाएंगे है नहीं मैशअप चलिए सुनिए

या अमरीश भोला सिंह मेरे प्यारे सुनने वालों, कोई बुलाए और कोई आए, वो ये सॉन्ग है, कोई बुलाए और कोई आए, मुकेश का एक नगमा। और मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ मेरे प्यारे से नौ खात अतल एरक्सनल और, लेकिन आप ऐप कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, हम तो सोचिए आज कोई ना ऐप करी, वेरवा इतना 20 साल सब चल गए स्त्रांत घूमे वूमे, और जैसे मोयवेर रहे तब बहुत फेस वेस भी रहे, मतलब बहुत लोग ऐप करे ऐप करे। और एगो बोलिल है कि पहले रतन को हम सुनीला ओकरे बाद हम जाला घूमे, तू खराब करत हुई है मात मखवेल खिलवाड़ तू कर सके है, मैं हम ना विश्वास करी ला आनो कांग। ब्रायन मोहन मेरे प्यारे सुनवालों, और अफिशा की आवाजें, ये गीत इन दोनों ने मिलकर भी सजाए हैं, बनाए हैं, आप तक पेश कर रहा हूं। और अभी जेरी खयाम का एक नगमा आप तक पेश करेंगे। सैटरडे नाइट फीवर है ये मेरे प्यारे सुनवालों, लाइव फन यू आर स्टूडियो रोटरडम।

0: जेरी खयाम मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं सैन अर्बन मैशअप। मोड़ कल मेरे प्यारे सुनने वालों, आज तो लोगों की सेवा हम करेला, लेकिन कल मैंने भी सोचा है अगर मौसम ऐसा रहा दखा एक लेकर उगवान ले, मैं तू जाने हम स्तरांत वरांत ना जाएला, फिल्स तो वारम और हम पारासोल के नीचे लेट के मजा ले ना, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। दोस्त दैट खातम नहीं वोर्ड, मेरे प्यारे सुनाल, आप जब ऐप करेंगे अब 020-363-0808, वर्गीत नीट या नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं और किस तरह का नगमा आप चाहते हैं। अंसनेल ऑफन सोल नंबर, अलमा लोकल्स, गेन ओरिजिनल फिल्म सॉन्ग्स मालूम रहे, दिस गेन टाइटल्स डोरगेव। इगी जो आज और कल रिलीज हुआ है, कल वाला हम पेश करते हैं, अति सेल्फ द नंबर, लेकिन तुफालग टू फर्स्टिलेंड सांगर है सर, जो कल रिलीज भाई है आज वाला अब भी छोड़ दे लातर साइड, हम जायला ट्राई करे तुलों खाद, ये है रिहाना सम ट्रिनिटी पॉप हीर ऑन यू आर।
1: रिहाना

Ya. Rihanna, Rihanna. इनका वर्जन हमने पेश किया है, ये कल रिलीज हुआ है और आज जो रिलीज हुआ है वो काकड़ सुनाएंगे आरती सुखाई खिलावन और वही नगमा है। पेश करता हूँ नमाखी सेल्फ बसले सर के और मोई से गायल। आज तुलुंग शूरी बातें जुली सैंड शूरी

था आरती सुखाई खिलावन का फैशन। आप श्यूरी है, आप ही बताइए। हमारे ये प्रोग्राम में जो भी कोशिश करते हैं अच्छे गाने के लिए, उन सभी को पेश किया करता हूँ अपने प्रोग्राम में, क्योंकि पसंद हर एक का अलग अलग होते हैं। वह बालमाल फर्स्ट खिलन स्मार्ट

Beach Musiven ada Dur Kui Belkadil Beach Program me Hai Mi Paya Tu mi repiari senola 020-363-0008 Per aapko app karna hai जो लोग ये कश उठाएंगे उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे अभी 8 बजे की इश्तिहारों के बाद और जिस तरह से ऐप आए हैं अंडर उसी के हिसाब से हम गीत आप सभी के लिए चलाएंगे बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है हैव खडूल्ड क्योंकि लिस्ट काफी लंबा चौड़ा हो चुका है आपका गीत हम जरूर से जरूर चलाएंगे आप देरी से ऐप किए हैं तो देरी से भी आपके ऐप हम पेश कर पाएंगे दिस हैप फॉर ऑल खडूल्ड मैं देखता हूं ये जो गाने वाले हैं आप सभी के लिए इंदर कन्हाई

ब्रायन मोहन मेरे प्यारे सुनो, जग लाल लाल लाल लाल लाल देखे है मुझको। मेरे प्यारे सुनो, इस घंटे का आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ और इस गीत के बाद 8 बजे के इश्तिहारे की ओर हम बढ़ चलेंगे। इश्तिहारों के बाद हम फिर हाजिर रहेंगे, सेवा करने फिर हम हाजिर रहेंगे आप सभी के लिए लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। और तब हम जाकर देखेंगे कि कौन है जो लोग ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए स्टूडियो में, उन सभी के नाम से गीत चलाना शुरू करेंगे। फुल हॉर्ड ऑफ हम बिन को फंड एपियस, और जैसे मैंने कहा हेप फॉर ऑल खदूल्ड। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये सागर मलिक।

कभी खुशी कभी गम ना जुड़ा होंगे हम। ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 8 बजकर। एक शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हुए, एंजॉय योर वीकेंड। शनिवार है, लंबा वीकेंड है बहुत सारे लोगों के लिए, पिंकस्टर वीकेंड। और जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्रिय सुनने वालों इस वक्त काम पर है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रेन चलाता है, बस चलाता है, अस्पताल में काम करता है, ऑफ अब्दुल लुखावन सिकन हाउस में, फॉर ऑल सिकन हाउस में ब्रुडर्स हमारा, तो दिल लगाकर काम करना है। एंड मोहर द लीचेस फॉर यू ली आरबेस विटामिन साइन लाच नीत नान नचिए बचिए तो सब जान जाए कि तू फोकस ना बातें कम वहां पे मा वैलू जला रेडियो पर फराल कोई किस पोईती वोईती जब जाइए दे रहे तो मुड़िया ना हिलाइए, हटवा भी ना हिलाइए, गुड़वा भी ना हिलाइए, स्टेडी। मेरे प्यारे सुनने वालों, यहां से एपर्स के लिए हम गीत चलाना शुरू करेंगे और जिस हिसाब से ऐप आए हैं अंडर उसी हिसाब से गीत हम चलाएंगे। हैव टू ऑल स्टूडियो खडोल्ड यू हैव नीड टू ऐप अनदर स्टूडियो की कब हमारे गनवा आई तुर गाना आई सी कर रही था। पहला गीत जो है आइलिन जी के लिए हार्लेम शहर का। आइलिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड। और मैंने गीत को तैयार करके रखा है आइलिन जी, तुम्हें तो आशा हम करते हैं कि आप पसंद करेंगे, बस आपके नाम करता हूँ।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे चैनल और किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन और उनके छोटे भाई फासिल ऑफ द जैक। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेवालो। एपर्स के नाम गीत हम चला रहे हैं। पहला गीत आइलिन जी के लिए था, आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं। दनमुटू एपनार 023 363 0000। तू वहां ऐप करिए, अपन नाम बताइए, तू कहां से ऐप करे हैं और तू कौन सी मांगे है। गो चलता नगमा ऑफ एगो सोल। ठीक है, स्वागरी राज नंदन और आरती नंदन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अलमेर बैठ में। तो एंजॉय योर वीकेंड राज जी और आरती जी। एक गीत आप दोनों के लिए तैयार करके रखा है, अमोई जैसी स्टूडियो ब्लू ब्लूज मावेल मेटन मोए सॉन्ग इन एन जैज ब्लूज वर्जन।

क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, और जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ब्यूटीफुल नगमा फिर से जो सजाया गया है जैसी ब्लू स्टाइल में हमने आप तक पेश किया है। 7 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 8 बजने में 7 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ नेग। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, और गीत जो है हम नाम करेंगे ब्रीदा शहर में जो रहती है और जिन्होंने ऐप किए हैं गायत्री। डंकी वाल गायत्री आपके ऐप के लिए एक मेटली है, डिफरमासी नो मर्जी फ्रॉम सूरीनाम। ये गीत गायत्री के नाम और ब्रीदा।

या तो फॉर्मेशन नो मर्सी मेरे प्यारे से वालों, ये था विनेश और प्रवेश एंड नटुलक रेंडी। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए www.ujala.nl www.ujala.nl। हमारे प्रिय शहर में स्टीफनिंग शहर से भी ऐप आए हैं, जहां भैया लक्ष्मण जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो भैया लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। लेकर फरतूफदार बेहद स्ट्रांड माई फेवरेट स्ट्रांड एंड बुलेवार्ड स्क्रीवनिंग। और भैया लक्ष्मण जी, आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। एक गीत हमने तैयार करके रखा है, आपके नाम करता हूँ, एंजॉय।

रास्ते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। खूबसूरत गीत सेवा में जो पेश हुआ है मेरे प्यारे सुनो हीरो निवार सैटरडे नाइट फीवर मैं रतन लाइफ एंड हायरार्की यू आर के स्टूडियो रतनाम से जो आप तक पेश हो रहे हैं। हेमंत अनीता ik heb jullie bericht ontvangen. Ik weet niet wat er misgaat met de app, maar aap logon ke bericht mujhe mila hai. Bas aap intezaar kijiyega. Bahut druk hai. Aap logon ke liye bhi hum geet zarur se zarur chalayenge. Dus heb geduld. Ik heb bericht ontvangen. Het komt allemaal goed. Geduld hebben. Theek hai? Hum Den Haag ki or badh chalte hain. Wahan par Usha ji rehte hain aur unke app aaye hain aur Usha ji thank you well. हमेशा सपोर्ट करने के लिए, ट्यून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड। और एक खूबसूरत गीत द किंग ऑफ हिंदी पॉप की आवाज में उषा जी के नाम है डन हाग।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। लता जी का एक नगमा आसिक मन्नीत फरखेज फन फिल्म स्वीकार किया मैंने, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी हुसैन ने गाकर सुनाए हैं। 020-363-0808 स्टूडियो का व्हाट्सएप है मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी मौका है और जगह भी है आपके लिए गीत चलाने के लिए, तो अगर आप ऐप करेंगे ये कश आप उठाएंगे तो आपके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे एक गीत चलाने के लिए। मार खूं खडुल्त है बस, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग खडुल्त हो जाते हैं en dat moet je niet worden als je naar Saturday Night Fever luistert. Je 5 घंटे का प्रोग्राम है और जिस तरह से ऐप आते हैं उसी हिसाब से गीत हम चलाते हैं, और मैं क्या करूं। अमस्टरडम सेंट्रम में सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रभा जी एंड मैथ क्लाइन डॉक्टर इशाया, ब्यूटीफुल नाम इशाया, खनित युली आ भरपूर दोनों लेकर खनित फन मोये वीर फन युली साथ रखावन। एक गीत हमने तैयार करके रखा है प्रभा जी और इशाया जी, आप दोनों के नाम दार नमस्कार हम सिंद्रम।

लड़की बड़ी अनजानी है, अपनी ही रंग और ढंग में फिर से गीत सजाया गया है और हमने आप तक पेश किया है हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों 9 बजे की ओर, और बहुत सारे लोगों के लिए अभी गीत चलाना है। आप भी चाहते हैं तो नॉकमास 020-363-0008 पर आपको ऐप करना है। अमस्टरडम में इरेना या इरेना सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो डंकीवेल आपके ऐप के लिए इरेना। और एक गीत हमने तैयार करके रखा है सागर मलिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में, इनकी आवाज में प्रख्तक बखलाए दौड़ माइस्ट्रो ज्वाला लक्ष्मण। पेश करता हूँ इरेना के लिए, ऑफ इरेना के लिए एडम्स्टरडम।

सागर मलिक की आवाज मेरे प्यारे से नौलो की देखा एक ख्वाब तू ये सिलसिले हुए। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं स्वागती सरवन नायजी। तो डंकीवाल स्वाग आपके ऐप के लिए सरवन नायगी जी, एक गीत हमने तैयार करके रखा है आपके नाम करता हूँ। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय यू आर।

0: Live vanuit de Hoogstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender.

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, द जूनियर्स फ्रॉम सूरीनाम, ये था नवीन सरजू, बाखुदा तुम ही हो। 9 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 9 बजकर। शुभ रात्रि आप सभी को कहते हैं, नहील खुएनावंत, वीकेंड है, शनिवार है, सभी मगन में है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो सुन रहे हैं प्रोग्राम टाउन में, बेशक है भीरल है, और जो बॉक्स रहते हैं तो उनके जरिए, ब्लूटूथ के जरिए वगैरह वगैरह है, बस खस्त्रीन और एकदम कस के। अरे ऐसे ना करिए कि ब्यूटी के तोड़ तो करिए, मार्वेलों से तन ब्लै कि आप सभी भी अपने बाग बगीचे में एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम। एंडमैन से दिए इन्होंने बालकोन, वो बहुत सारे लोगों के टाइम नहीं है, मोबाइल में इसकी नंबर बालकोन अच्छे ऑफन सेहर एंजॉय। 020-363-0808 पर बहुत सारे लोगों ने ऐप किए हैं, उन सभी के लिए गीत चला रहा हूं। हमारे लिस्ट पर नाम है स्वाग में इस वक्त हेरवाल्डो मरखरी जी, और उनके साथ भी है नईफ आसिफ और दुष्का। तो आप सभी को वहां हेरवाल्डो जी, मरखरी जी, आसिफ और दुष्का जी, एंजॉय योर वीकेंड, सो लुक खसेलख मेटलकार, और चुन किए हुए हैं उजाला रेडियो पर नाउ डनमाकुली मतो हेल माल ब्लाई। एक गीत हमने तैयार करके रखा है, दैट इज इंद्रनील रॉय, फोकस में सितम बीच स्विंगिंग, या मैं यूली कुने वाल डांस, तो एंजॉय।

मेरी बेरी के बेर मत तोरो, कांटा छुप जाएगा। इंद्रनील रॉय की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, गीत हमने आप तक पेश किया है। और अब द लायन ऑफ बैठक रविंद्र सिंह सिवनाथ जी हिस्सा लेंगे। और ये गीत जो है रोहतास शहर में भैया जॉनी कालीचरण प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो भैया जॉनी कालीचरण जी हमेशा चून करने के लिए, साथ देने के लिए थैंक यू, वेल बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत जॉनी कालीचरण आयत रोहतास, जो द लायन ऑफ बैठक रविंद्र सिंह सिवनाथ जी गाएंगे, आपके नाम करता हूँ।

बात रविंद्र सिंह सिवना जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, लाख जतन करी है या ब्यूटीफुल सॉन्ग और एकड़ गाना खैर मैस की तरह या दनिस धीर लकुम तलाई सर हैं। इस तरह जो जवान लोग गा रहे हैं तो बैठक का और भी मजा है। ऐसा दूनत खुद रविंद्र सिंह सिवना जी इस खून एन वेरल्ड आर्टिस्ट है, डू इट सो गुड। और हमारे अंडर का जो दूर छुपे हुए था ये बैठक गान, इन्होंने फिर से जगा दिया है। और जब ही ये लोग गाते हैं ऑल द यंगर ट्रांसफोर एह बोंदरिंग उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। 6 मिनट बाकी है सरे 9 बजने में, 6 मिनट फोर डो क्लॉक फन हाल्फ 3। सुशीला चंद्रिका सिंह जी हम सल्फेन में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो डंक यू वेल सुशीला जी, एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और गीत हमने तैयार करके रखा है आपके नाम, करता हूँ द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागितुसैन।

कहीं करती होगी वो तो मेरा इंतजार। द किंग ऑफ हिंदी पॉप, और आज द किंग ऑफ हिंदी पॉप के बहुत सारे गाने हैं। अभी कुछ देर में उनके कुछ और गाने हम आप तक पेश करेंगे। एक बैन ऑफ द टिटल्स अफगान और दंसी एक तोख दत्त उमर जी, एंड नेचुरली हैव हैव फील इट्स गजोंग। तो आज उनके गाने कुछ ज्यादा है प्रोग्राम में, मस्त से वेल मूवी। लीजिए फॉर माई कोलीगा बड़का भैया सतीश रामदास मिसिर जी, जो एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। तो बड़े भैया एंजॉय योर वीकेंड नेम रेंज एंड दिस फ्रॉम द लेजेंड शहीद वागित हुसैन सतीश रामदास मिसिर के लिए।

लू एक कली मुस्काई, और वो भी शहीद वागिद हुसैन की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। सैटरडे नाइट फीवर है ये मेरे प्यारे सिनेवालों, और फिल्मी गाने नए पुराने फिर से जो गाया गया है, सजाया गया है, हमेशा ये प्रोग्राम में आप तक हम पेश कर रहे हैं। एंड इधर इन हीसन ऐ खदराए रान आप देख रहे हैं। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन को हम पेश करेंगे प्रोग्राम में मेरे प्यारे सिनेवालों, और ये गीत जो है नाम करेंगे दनहाग शहर में जो रहती है। मीके मीके जी दांग किरल आपके ऐप के लिए चून करने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दांग किरल शुक्रिया, धन्यवाद। डेज इफ सूर्या

दिल में तुझे बस आके कर लूंगा मैं बंद आंखें पूजा, करूंगा मैं तेरी। लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत, ओरिजिनल फ्रॉम द मूवी फकीरा, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन की आवाज। अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनोलो, हम आपको लिए चलते हैं। संजय योढ़ा गीत गाकर सुनाएंगे और इसे हम नाम करेंगे आईफी जहांगीर, जो हम सदाम में रहते हैं, हमेशा सुनते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया, डंकी वेल आईफी। एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर, और ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

या किस लिए मैंने प्यार किया, किस लिए मैंने प्यार किया। प्यार करके पछता रहे हैं, प्यार करना इतना आसान नहीं। प्यार इस ओकन लुक्स है, और प्यार अगर आप करें तो उसे निभाना चाहिए। तो दत्त निमिर खान मार आल्ट एच बेसर फॉर दम। प्यार एक ऐसा चीज नहीं कि जिस पर दिल आ जाए उसे प्यार हो जाए, नहीं। प्यार है गहराई, प्यार एक एहसास है जो आप महसूस कर सकते हैं एकदम आपके दिलो दिमाग में, आपके नस नस में, आपके खून में रग रग में दौड़ रहे हैं, उसे कहते हैं प्यार। मेरे प्यारे सुनो वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, और आमस्टरडम में भैया इकबाल ख्वाजा प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो इकबाल जी डंकी वेल आपके ऐप के लिए, इकबाल ख्वाजा जी आए तो आमस्टरडम। गीत जो हमने तैयार करके रखा है चलाएंगे आपके नाम।

प्यार किया है एक बेवफा से, द किंग ऑफ इंडी पॉप उमर वागी तुसैन, मेरे प्यारे सुनने वालों। और इस घंटे का आखिरी गीत रिया कल्लू जी के नाम हम करेंगे आइटम सदम। थैंक यू रिया कल्लू जी, आपके ऐप के लिए ये नगमा आपके नाम करता हूँ शेखर कुमार। इस गीत के बाद ब्रेक, मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्रेक के उस पार आप सभी से हम जरूर से फिर मिलेंगे।

थोड़ी सी सूरत आंखों में मस्ती, अरे हाय हाय मोए दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनो लो उजाला रेडियो है ये आज की खूबसूरत शनिवार वारत या अंबीच कैसे सब बोले एक कॉमनी थे इसमें माक नहीं आज मन उनमें से सुन सूला हाँ सूला आवन और शायद सूला नख भी होंगे क्योंकि बहुत गर्मी है मारत इज हियर स्टूडियो में बहुत कूल है और खसेलर भी है उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं वहां पर भी खसेलर है अच्छा तीन मिनट ओवर द क्लॉक वन तीन मेरे प्यारे सुनने वालों 10:10 गुजर चुके हैं मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे आपका यारों का यार और आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनो आपको मालूम होना चाहिए भी कि अगले हफ्ते मैं बुधवार और बृहस्पतिवार दो वुंसख एंड दोनों रख बैने कर वुंसख में बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6-9 और दिल की आवाज हम पेश करेंगे डोंडरडहावंत 28 रात्रि में 8-11 शनिवार को 1:30 दम बहने करनी थी या आपको मालूम रहे दम बहने करनी दम बहने कर फोकस में इससे स्वेर एक वेट नहीं थे दैट फॉरटेल एक वाल फोन ट्विक सुरिनाम से हेमंत और नीता प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं यार देखेंगे व्हाट मिस मेड मिल्चेस मार एक हैप यूली मिल अलमल वेल ऑन्फंग एंड फॉक्स मैं यूली फॉर मैं होक कोई बात नहीं आप चून किए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं आज की प्रोग्राम के साथ नगमाओं के साथ तो हेमंत जी और नीता जी आज सुरिनाम डांक यूली वेल एक गीत जो अभी अभी रिलीज हुआ है किंग सेलेक्टा सविता सिंह और साधना लीला द गोलगप्पा सॉन्ग हेमंत जी के लिए और नीता जी के लिए आज सुरिनाम

या बनी है गोलगप्पा और बनी है गोलगप्पा। सेलेक्टा किंग सेलेक्टा सविता सिंह और साधना लीला जी की आवाजें। हील माल फेयर्स फंड पेयर्स मेरे प्यारे सुनने वालों, द गोलगप्पा सॉन्ग वर्चुअल डी। मेरे प्यारे सुनने वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और हमारे प्रिय सूरीनाम में ब्लाउग्रॉन्ड ब्लाउग्रॉन्ड ब्लाउग्रॉन्ड वहां से सुन रहे हैं प्रोग्राम जानी सर। तो जानी सर दंकीवेल आपके ऐप के लिए फैन दच्चे अफगस्टेम्बेंट अप यू आर दार इन इत मूवी प्रख्तक सुरीनाम। मैंने गीत तैयार करके रखा है वन ऑफ द फाइनेस्ट सांगरेस इन दिनों का फारसी अलाइज मोहम्मद खान जी, इनका गाया हुआ गीत। Ik heb er twee vandaag in de playlist. Later komt er waarschijnlijk nog één. Ik moet even kijken. Lekin je giet. Aapke naam karta hoon. Janisar. Daar in het prachtige blauwgrond. Waar iedereen naartoe gaat. Altijd om lekker malai te eten. Hena.

मर्सिया लैज़ मोहम्मद खान जी की आवाज, दीवाना हुआ बादल। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, 8 मिनट बाकी हैं सरे 10 बजने में, जबकि हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। और हमारी लिस्ट पर नाम है मार्स ब्रुक का, हिरेंद्र और चित्रा जी, थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। Enjoy you are, enjoy Saturday Night Fever, enjoy your weekend. हिरेंद्र जी और चित्रा जी, ये गीत कुमार सानू और अभी दाराम जान की आवाज़ में, आप दोनों के नाम।

नजर के सामने और जिगर के पास तुम रहते हो या कोई रहता है और वो है तू। ब्यूटीफुल आवाजें कुमार सानू जी द टाइगर और अभिदारम जान। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर और नॉन अदर देन शिखर कुमार जी की आवाज में गीत हम पेश करेंगे। शिखर कुमार जी गीत गाएंगे और ये गीत जो है हम नाम करेंगे हमसे नाम का सत्या। सत्या जी आपके नाम करता हूँ फेन द चाफ्सम ऑफ बेंट वास्नी बेंट और भरपूर आप एंजॉय कर रहे हैं। ये गीत आपके नाम करता हूँ, एंजॉय।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। शेखर कुमार की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, हमने ये खूबसूरत गीत आप तक पेश किया है। पांच मिनट मेरे प्यारे सुनने वालों गुजर चुके हैं सरे 11:05 ओवर क्लॉक फन हाल्फ हाल्फ एल्फ। धीरे धीरे वक्त निकला जा रहा है, मार वसैन तत्त 12 बजे मेरा ये प्रोग्राम सेहत रही नाइट फीवर 12 बजे तक आपका दिल हम बहलाएंगे। लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे सुनने वालों कि 11 से 12 बजे नखावाली मसूल नंबर सराय हमेशा की तरह और आज भी। जेनी आइट अम्सरडाम ओस दंकीवाल जेनी आपके ऐप के लिए फैन द चौक ऑफ स्टेम्बेन हिलमाल फेयर सन पेयर्स अलीचे फन टायरा ऑफ टीरा मैं एक दिन टायरा एक चटनी पाश हम आप तक पेश करेंगे। दिस इज फॉर

या टायरा मेरे प्यारे सुनो मैं थार चटनी बैश हमने ये गीत आप तक पेश किया है अत्यंत हिल वाल फेयर सन फेयर्स मेरे प्यारे सुनो वालों अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और ये गीत जो है हम नाम करेंगे अल्फानंदराय में जो रहती हैं कमला कमला डंकी वेल लेकर आपका स्टैम्प टॉप यू आर कमला जी एंजॉय योर वीकेंड और ये है निशल बी और रोहित चांद खूबसूरत गीत गाएंगे और आपका नाम करता हूँ

या तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, रोहित चांद और निशल भी। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिनेवालो, एट दिस क्वार्ट फॉर एलफ स्टूडियो तहत मेरे प्यारे सिनेवालो, 11:15 का वक्त है और ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर। फारसिया लाइस मोहम्मद खान जी गीत गाएंगे और इसे हम नाम करेंगे सूरीनाम का। रिका खुदाबक्स जी जो आज पहली बार प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो रिका जी, रिका खुदाबक्स जी, थैंक यू, शुक्रिया आपके लिए। फारसिया का गाया हुआ ये नगमा मैं आपके नाम करता हूँ।

जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें मैं रात दिन यहाँ से वहाँ। फर्सिया जी प्रख्त पखलाई दूर माइस्त्रो ज्वाला। मेरे प्यारे सुनो वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। एंड दैट इज वनीता विली और राउती रामरूप, कुछ त्रिनी पॉप हो जाए, जिसे हम नाम करेंगे यूएस ऑफ ए, अमेरिका टेक्सस में, जो हमेशा चून किए करते हैं और ऐप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, वेल थैंक यू अजय और सुनीता जी और जितने लोग भी आप लोगों के साथ सुन रहे हैं ये गीत आप सभी के नाम।

अनीता विली और रवती राम रूप मेरे प्यारे सुन वालों, माई हार्ट इज बीटिंग कीप ऑन रिपीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, सेवा में जो पेश हुआ है। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करेंगे और पेश करेंगे नाम वो जो इस वक्त काम पर है और चुन किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, टोनी इसरी अहित अलमेर डांकीवेल, धन्यवाद आपके ऐप के लिए, दिल लगाकर काम करना एंड एंजॉय यू आर। ये गीत आपके नाम, इस गीत के बाद ब्रेक होंगे मेरे प्यारे सुनवालों और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

सागर मालिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, कौन है जो सपनों में आया और कौन है जो दिल में समाया, प्रख्तक भलाई दौड़ माएस्ट्रो ज्वाला। मेरे प्यारे सुनने वालों, 9 मिनट गुजर चुके हैं 11:05 का ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर का आखिरी घंटे में मान पड़े हैं, क्योंकि रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे, 13 मेरा साथ रहेंगे टिल मिडनाइट। एपर्स के लिए गीत चला रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस घंटे में खावा अलीम रुस्तख नुमरसर आए, और हमारी लिस्ट पर नाम है रोहतांग शहर का रोहनी कल्लू। डंकी वेल रोहनी कल्लू जी, आपके ऐप के लिए एक गीत शेखर कुमार की आवाज में हमने तैयार करके रखा है, आपके नाम करता हूं डंकी वेल।

इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में जो हमने ये गीत पेश किया है शिखर कुमार की आवाज में, और अगले गीत जो है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन गीत गाएंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, सहते रहे नाइट फीवर में, ये नगमा हम नाम करेंगे बरेरा शहर का, मफराव इन मनेर बिहारी जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, चुन किए करते हैं, सुनते हैं प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेल मफराव इन मनेर बिहारी जी, अद बरेरा, ये गीत आप दोनों के नाम।

मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागितो सेन, मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस गीत के बाद हम आपको ले चलेंगे आर पिता श्रीवास्तव की ओर। खूबसूरत गीत ये गाकर सुनाएंगे हीरा निवार।

ये समा समा है दिलदार का, किसी की इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा। सुन लो हसीना, अर्नोल्ड मलाहे और लुक। प्यारी सुन लो, रिमेंबर दिस इज यू आर सैटरडे नाइट फीवर लाइव फनाइट यू आर के स्टूडियो रतनाम से जो पेश हो रहे हैं।

अर्नोल्ड मला है मेरे प्यारे सुनने वालों, और लुक, और ये जो गाने वाले हैं खूबसूरत गीत देवन गोविंद। ऐ सनम जिसने तुझे ये चांद सी सूरत दी है,

देवन गोविंद की आवाज में गीत मुकेश का आप सभी ने सुने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और ले चलता हूँ हमारे भारत देश का एक फाइनेस्ट सिंगर साउथ खान, इनकी आवाज में रवि साहब का ये नगमा।

जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। साउथ खान की आवाज सैटरडे नाइट फीवर में आपकी बार मेरे प्यारे सुनने वालों निजाम वागित हुसैन की आवाज में गीत आप तक पेश कर रहा हूं।

घर तुम भुला ना दोगे निसाम वाकित हुसैन, मेरे प्यारे सुनो लो हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में अब निसाम के छोटे भाई इबो वागी तुझे, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया।

मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, और तूने मुझे मांगा और मुझे पाया है। इबो वागी तुसेन मेरे प्यारे सिनेवालो, इबो के बाद सेवा में मैं देख रहा हूं विनोद राठौड़।

ये दुनिया वाले पूछेंगे कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, विनोद राठौड़ की आवाज। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 13 मिनट बाकी है 12 बजने में, 13.5 मिनट फोर ट्वेल्व और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। लकी सिंह को पेश कर रहा हूं, आंखें तेरी गीत का बोल है और एंजॉय।

ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ लकी सिंह, मेरे प्यारे सुनने वालों, आंखें तेरी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं एम की ओर, मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं देखता हूं कि शायद दो नगमाएं और आप तक हम पेश कर पाएंगे, उसके बाद हम यहां से रुखसत होंगे। सुबी, मैं शायर तो नहीं

मैं शायर तू नहीं, सुबी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त आ गया कि मैं आखिरी नगमा पेश करूं। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जितने लोग भी ऐप किए हैं, साथ दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम आज हमने सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। Volgende week, zaterdag, dan ben ik er niet. 30 mei ko hum nahi rahenge. Lekin usse pehle, woensdag 27 aur donderdag 28, pesh karenge program Back to the Future aur Dil Ki Awaaz. Mere pyare suno, raha phool to fir khilenge aur raha ye khoobsurat zindagi to natürlich hum zarur fir milenge. सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

ताली तक झुमी तक ताली तक झुमी तक झाला आंबो तक झुकी तक ताली गेने तक नक तक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झम धरिता जग धरिता झन झाले कोकू धारी दाबू तारी गेटे ताली धरिता जग धरिता झन झाले कोकू धारी दाबू तारी गेटे झम धरिता।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें

ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।

0: दिस इज उजाला रेडियो।
1: भैया सिपाही की जिंदगी का क्या भरोसा, आज की रात इकट्ठे गुजारेंगे। सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरालो महफिलें सजालो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए।